0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

कल शाम 10 जून को सग्रादा फमिलिया महागिरजा घर में मनाए गए पवित्र मिसा के साथ संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा चरण समाप्त किया। पवित्र मिसा से पहले संत पापा ने संत अगस्ती के महागिरजा घर में धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने रेंजो नाम के 6 साल के लड़के के लिखे गए पत्र का जवाब देने से पहले गरीबों, बुजुर्गों, प्रवासियों और पिछड़े लोगों की सेवा करने वालों के अनुभव सुने। संत पापा से रेंजो के सवालों में से एक फुटबॉल के बारे में था। हालांकि उन्होंने माना कि टेनिस उनका पसंदीदा खेल है, संत पापा ने पेरू में अपने बिताए गए दिनों के बारे में प्यार से बात की, जहां वे स्थानीय फुटबॉल टीमों के खेलों को देखते थे और सेमिनारियों के साथ भी खेलते थे। उन्होंने कहा, थोड़ा सा खेल सबके लिए अच्छा है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की सेहत बनाए रखने के तरीके खोजने होंगे। संत पापा ने फुटबॉल को ही जिंदगी की एक तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जिंदगी अकेले चमकने का रेस नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो एक टीम के तौर पर खेला जाता है, और यह देखते हुए कि सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आखिर में फेल हो जाता है अगर वह दूसरों को शामिल करने से मना कर देता है और वहां उपस्थित स्वयं सेवकों और चैरिटी करने वालों की ओर मुड़कर संत पापा ने सहयोग और सेवा की भावना दिखाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रेंजो का एक और सवाल दादा दादी से जुड़ा हुआ था, जिनके बारे में संत पापा ने कहा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने उन अनगिनत दादा दादी की तारीफ की जो माता पिता के काम करते समय पोते पोतियों की देखभाल करते हैं और जो चुपचाप नई पीढ़ी को विश्वास, प्यार और मूल्य देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना महाधर्म प्रांत में किए गए काम की तारीफ की और जोर देकर कहा कि कलीसिया का उदार मिशन ऐसे समय में और भी जरूरी हो जाता है जब समाज अक्सर इंसान की पवित्र गरिमा को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह गरिमा पैसे, काबिलियत और सामाजिक प्रतिष्ठा से निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हर इंसान ईश्वर की छवि में बनाया गया है और वे उससे प्यार करते हैं। संत पापा ने कहा कि इंसान कलीसिया की कामों के केंद्र में है। संत पापा ने अपना संदेश समाप्त करते हुए कहा कि वे अपने पुरोहितों के साथ अपना मिशन जारी रखें, ख्रिस्तीय आशा के भरोसेमंद गवाह बनें और अपनी सेवा के जरिए ईश्वर के राज्य के न्याय और शांति को फैलाएं। इसके बाद संत पापा लियो ने शाम को सागरदा फमिलिया महागिरजा घर में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया।

संत पापालियो चौदहवें ने स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा में बार्सिलोना के साग्रादा फामिलिया महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए नवनिर्मित येसु ख्रिस्त के क्रूस मीनार का उद्घाटन किया। आज साग्रादा फामिलिया का महागिरजाघर हम सबों को अपना द्वार खोलते हुए मानो यह अपनी बाहों को खोल रहा हो। इस सुंदर शहर में इस बलिवेदी में ईश्वर के वचनों को सुनने हेतु स्वागत करता है, जो हमें ईश्वर के एक परिवार का अंग बनाता है, जहां हम यूखारिस्त में उनके जीवन द्वारा पोषित किए जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यह गिरजाघर बहुत सारे पत्थरों से बनी एक इमारत है, एक घर जो एक परियोजना के हिसाब से वर्षों में निरंतर बढ़ता रहा है। हम सभी इस जीवित पत्थर के अंग हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यह कार्य हमारे जीवन में समाहित है, जिसे ईश्वर एक उत्कृष्ट कृति के रूप में देखते हैं, जिसे हमें एक साथ करना है और जिसके लिए वे हमें सहयोग करने को बुलाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, हम यीशु पर विश्वास करते हुए युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए निर्दोषों को नहीं मार सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए दुखियों, रोते हुए लोगों और मुसीबतों से भागने वालों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। आज की शाम आइए तब हम यीशु के क्रूस की याद करें, जो इस महागिरजाघर का मुकुट है। यह अंतिम व्यक्ति का क्रूस है जो प्रथम बनता है। 3 सदियों से साग्रादा फामिलिया इस साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। जन्म के द्वारा सर्वप्रथम हमारे लिए वे अंतिम बनते हैं। अपने बलिदान, अपने दुख भोग के द्वारा वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी मृत्यु हमें जीवन प्रदान करती है, जिसके द्वारा वे हमें दिव्य महिमा के भागीदार बनाते हैं। जैसे हम यीशु ख्रिस्त के मीनार की प्रशंसा करते हैं, हम अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हैं, उनकी ओर जो हमें ईश्वर और स्वयं हमारी सच्चाई को प्रकट करते हैं। इस भांति क्रूस का मीनार हमारे लिए करुणा का एक झंडा बनता है, क्योंकि ईश्वर हमें इसी रूप में प्रेम करते हैं। मृत्यु को हमारे लिए आशा की एक निशानी में परिवर्तित कर देते हैं। यीशु के क्रूस में हमारा विश्वास अपने शिखर तक पहुंचता है। संत पापा ने कहा कि यह विश्वास है जो पत्थरों को आकार देता है और इस इमारत को अर्थपूर्ण बनाता है, जिसमें हम साथ रहते हैं। वे एक शिल्पकार हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में अपनी शानदार छाप छोड़ी है। ईश्वर के रूप में स्पष्ट मानव उनकी कलाकृति का प्रत्युत्तर देता है। इस तरह कलाकार हुनर को प्रशंसा में और सृजनात्मकता को सृष्टिकर्ता के साक्ष्य में बदल देता है। एक शिल्पकार के रूप में विश्वास के प्रेरित पूजनीय अंतोनी गाउदी ने इस स्थान का निर्माण किया, इस उद्देश्य से कि वे ईश्वर के रहस्यमय जीवन की चर्चा कर सकें। इस भांति उन्होंने हमारे लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ प्रस्तुत किया है, जो हमें यीशु से मिलन को अग्रसर करता, जो हमारे खातिर जन्मे, मरे और पुनर्जीवित हुए। गाउदी के संग जैसे कि हम उनकी मृत्यु की सालगिरह मनाते हैं, हम इस बात की याद करते और इस संध्या बेला में उनके सहयोगियों और हिताशियों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलाकारों और मजदूरों के सहयोग से एक अद्वितीय कलाकृति का निर्माण किया गया है, जो पत्थरों, रंगों और रोशनी से बनी एक शानदार शिक्षा को प्रस्तुत करती है। इस समय जब ख्याति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह हमारे लिए और भी स्पष्ट हो जाता है कि कला और सुंदरता कैसे सुसमाचार प्रचार के खास माध्यम बनते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस गिरजाघर की सुंदरता हमें हमारे गुरु और स्वामी से उनके सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की कला सीखने को प्रेरित करती है। अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हुए जो क्रूसित और पुनर्जीवित हुए, आइए हम अपने को उन्हें उठाने हेतु समर्पित करें जो गिरे पड़े हैं,
और ऐसा करते हुए हम इस बात को घोषित करेंगे कि साग्रादा फामिलिया विश्वास का सबसे ऊंचा गिरजाघर है, दुनिया की गिनती में अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि उन तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए जो कतालोनिया की तीर्थयात्रा करते हैं, जिसे क्रूस उनका मार्ग प्रशस्त करे, वैसे ही जैसे एक दीप उद्दीप्त होता है और हम दुल्हे के लौटने का इंतजार करते हैं।

0: बार्सिलोना में अपनी प्रेरित यात्रा का दूसरा पड़ाव समाप्त करते हुए संत पापा लियो आज सुबह लगभग 7:30 बजे हवाई अड्डा जाने के लिए महाधर्माध्यक्ष निवास से प्रस्थान किए, जहां उन्हें कुछ स्थानीय अधिकारियों से अभिवादन मिला। इसके बाद लियोन इबेरिया A320 विमान में सवार हो गए। अपनी विमान यात्रा के दौरान टेलीग्राम में संत पापा लियो ने मोरक्को के राजा मोहम्मद षष्ठम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी और दिल से उनका आशीर्वाद मांगा। संत पापा लियो 14वें ने पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति अंतोनियो जोस सेगुरो को प्रेषित संदेश में पुर्तगाल के लिए भी प्रार्थना और आशीर्वाद भेजा। संत पापा 3.5 घंटे की विमान यात्रा के बाद ग्रान कनारिया ग्रैंडो हवाई अड्डे पर उतरे। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। कनारी आइलैंड में संत पापा के दौरे का पहला कार्यक्रम ग्रान कनारिया के दक्षिणी तट पर अर्गुएने बंदरगाह पर प्रवासी स्वागत केंद्रों के साथ मीटिंग है। इस बंदरगाह को अभी भी शर्म का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2020 में कोविड इमरजेंसी शुरू होने के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,000 प्रवासी वहां पहुंचे थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी बंदरगाह में जाने की इजाजत नहीं थी, फिर कारितास ने जहाज टूटने पर मदद करने के लिए अपने काम जारी रखे, जिसमें खाना और दवाई सप्लाई करना था। संगठन का एक स्वयंसेवक उन लोगों में शामिल होगा जो संत पापा के साथ अपनी बातें साझा करेंगे।
1: स्पेन की प्रेरित यात्रा के तीसरे पड़ाव पर 11 जून को पोप लियो 14वें ने ग्रान कैनरी के पोर्टो दी अर्गुएन में अप्रवासियों के साथ काम करने वाले संगठनों से मुलाकात की। कुछ लोगों के साक्ष्य सुनने के उपरांत मत्ती रचित सुसमाचार से पाठ पढ़े जाने के बाद, जिसमें अंतिम महान्याय के बारे बताया गया है, संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने अभी अभी सुसमाचार पाठ के सबसे कठिन अंशों में से एक को सुना। हम जानते हैं कि इसी अध्याय में एक चेतावनी भी है, जिसे कोई भी विश्वासी हल्के में नहीं ले सकता। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। पोप ने कहा, आज समुद्र के किनारे ईश्वर का यह वचन पुष्ट हो जाता है। यहाँ बहुत सारे घायल जीवन आते हैं, जिनका लगभग सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं खो सकती। यहाँ सुसमाचार हमें दर्शकों की हमारी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालता है और हमारे सामने एक भाई या बहन को रखता है जो आगंतुक है। यह हमसे पूछता है कि क्या हमने उन लोगों में मसीह को पहचाना जो रेगिस्तान, रात और समुद्र का सामना करने के बाद डर, भूख और हिंसा से घिरे हुए जहाज से उतरते हैं। पोप ने अपनी जिम्मेदारी के प्रतीक चिन्ह अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, आप देख सकते हैं मैंने मछुआरे की अंगूठी पहनी है। इसका नाम ही हमें गलीलिया सागर की ओर ले जाता है, जहाँ ख्रिस्त ने पेत्रुस को बुलाया और उनसे कहा था, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। कलीसिया ने इस वाक्यांश की व्याख्या अपने मिशन की एक छवि के रूप में किया है, लेकिन यहाँ और एल हियरो जैसे जगहों पर ख्रिस्त का आदेश खास तौर पर शक्तिशाली और दर्दनाक है। यह द्वीप जो आकार में छोटा किंतु इंसानियत में बड़ा है, हजारों लोगों के आने का गवाह रहा है, जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था और एक नाजुक नाव के हवाले कर दिया गया था। यहाँ लोगों को समुद्र से बचाया जाता है और पानी से बेजान लाशें निकाली जाती हैं। यही कारण है कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी इन बंदरगाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कलीसिया ऐसे जगहों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां भूख, प्यास, हिंसा, डर या देश के निष्कासन जैसे स्थिति मानव प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। यीशु के शिष्य रात में पुकारने वालों की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाइबल की भाषा में समुद्र खतरे, अंधेरे और उथल पुथल की निशानी हो सकता है। आज भी इन समुद्रों में राक्षस छिपे हैं, माफिया के रूप में जो निराशा से फायदा उठाते, तस्कर के रूप में जो औरतों और बच्चों को गुलाम बनाते हैं, और उन लोगों के रूप में जिनकी उदासीनता से गरीब लोग शोषण या भुला दिए जाने के द्वारा निगल लिए जाते हैं। लेकिन संत पापा ने याद दिलाया कि समुद्र की ताकत से विश्वास कम नहीं होता। हम एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो गड़बड़ी को ठीक करते, समुद्र को नियंत्रित करते और ऐसे रास्ते को भी खोल देते हैं जहां मौत हावी होने के समान लगती है। अगर ख्रिस्त समुद्र को शांत रहने का आदेश देते हैं तो कलीसिया उन लोगों के बारे में चुप नहीं रह सकती जिन्हें उसके जल में छोड़ दिया गया है। संत पापा ने टीटो और मरिया के गवाहों को लेते हुए कहा, आपके शब्द हमें दिखाते हैं कि हमारी नज़र का बदलना तब शुरू होता है जब अप्रवासी सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक श्रेणी या एक आंकड़ा नहीं रह जाता। तभी हम समझ सकते हैं कि वह छोटी बच्ची हमारी बेटी हो सकती है और वे चेहरे हमारे परिवार के हिस्से। तब हमारे अंतःकरण के पास कोई बहाना नहीं होता। दया छोटे छोटे कामों से शुरू होती है। मकसद सब कुछ हल करना नहीं है बल्कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपना है और उन जगहों पर उपस्थित रहना है जहां लोग परेशान हैं, जहां संसाधन कम हैं, जहां कोई आम भाषा नहीं है। संत पापा ने कहा, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो बचाव कार्य में हिस्सा लेते हैं। या उन शोषण के लिए तस्करी के शिकार ब्लेसिंग के साक्ष्य को लेते हुए पोप ने कहा, भले ही आप आज यहाँ नहीं हैं लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ है। अपनी कहानी हमें साझा करने के लिए धन्यवाद। आपके नाम का मतलब है आशीष और यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान का जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई भी इसे खरीद बेच इस्तेमाल या त्याग नहीं सकता क्योंकि सृष्टिकर्ता की छवि और स्वरूप हर इंसान में चमकती है। आपने हमें बताया कि आपने अपना देश इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप छोड़ना चाहती थी बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। आपके शब्दों से हम उन बहुत सारे लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्हें गरीबी, युद्ध, धमकियों या शोषण की वजह से देश छोड़ना पड़ा है। अगर दूसरों ने आपके शरीर की कीमत लगाई है तो जान लें कि ईश्वर ने आपकी अत्यधिक मूल्य को पहचानना कभी बंद नहीं किया है। आपका जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया। आपका जीवन ईश्वर का है जिसने आपको एक ऐसी प्रतिष्ठा दी है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। अप्रवासियों को संबोधित कर पोप ने कहा, प्यारे अप्रवासियों, आपसे कुछ और कहने से पहले मैं आपकी इजाज़त के आगे सिर झुकाना चाहता हूँ। आप सिर्फ संख्या या दस्तावेज नहीं हैं, आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे परिवार और घर छोड़ा है। आपके सपने हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने का किसी को कोई हक नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन की देखरेख होनी चाहिए। अपना जीवन उन लोगों के हवाले ना करें जो सौदा करते हैं। तब कलीसिया को चुनौती देते हुए पोप ने कहा, आप प्रवासियों का स्वागत करना छोटी बात नहीं हो सकती जिससे कुछ ही स्वयंसेवकों पर छोड़ा जाए। अंत में प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा, जीवन की शाम में ईश्वर जो हमारे प्यार के आधार पर हमारा न्याय करेंगे, हमें आज गरीबों और विदेशियों में उन्हें पहचानने की कृपा दें। आज यहाँ समुद्र के किनारे आने वाला हर व्यक्ति पूछता है कि हमारी मानवता में क्या बचा है। देर सवेर यह पता चल ही जाएगा कि हमने जीवन की रक्षा की या हमने उदासीनता अपनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसके बाद संत पापा ग्रान कनारिया में टेनेरिफ के साथ स्थानीय कलीसिया धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों से मिलने के लिए संत अन्ना महागिरजाघर जाएंगे और ग्रान कनारिया के स्टेडियम में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। कल शाम 10 जून को सग्रादा फमिलिया महागिरजा घर में मनाए गए पवित्र मिसा के साथ संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना की अपनी प्रेरित यात्रा का दूसरा चरण समाप्त किया। पवित्र मिसा से पहले संत पापा ने संत अगस्ती के महागिरजा घर में धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने रेंजो नाम के 6 साल के लड़के के लिखे गए पत्र का जवाब देने से पहले गरीबों, बुजुर्गों, प्रवासियों और पिछड़े लोगों की सेवा करने वालों के अनुभव सुने। संत पापा से रेंजो के सवालों में से एक फुटबॉल के बारे में था। हालांकि उन्होंने माना कि टेनिस उनका पसंदीदा खेल है, संत पापा ने पेरू में अपने बिताए गए दिनों के बारे में प्यार से बात की, जहां वे स्थानीय फुटबॉल टीमों के खेलों को देखते थे और सेमिनारियों के साथ भी खेलते थे। उन्होंने कहा, थोड़ा सा खेल सबके लिए अच्छा है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की सेहत बनाए रखने के तरीके खोजने होंगे। संत पापा ने फुटबॉल को ही जिंदगी की एक तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जिंदगी अकेले चमकने का रेस नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो एक टीम के तौर पर खेला जाता है, और यह देखते हुए कि सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आखिर में फेल हो जाता है अगर वह दूसरों को शामिल करने से मना कर देता है और वहां उपस्थित स्वयं सेवकों और चैरिटी करने वालों की ओर मुड़कर संत पापा ने सहयोग और सेवा की भावना दिखाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रेंजो का एक और सवाल दादा दादी से जुड़ा हुआ था, जिनके बारे में संत पापा ने कहा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने उन अनगिनत दादा दादी की तारीफ की जो माता पिता के काम करते समय पोते पोतियों की देखभाल करते हैं और जो चुपचाप नई पीढ़ी को विश्वास, प्यार और मूल्य देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना महाधर्म प्रांत में किए गए काम की तारीफ की और जोर देकर कहा कि कलीसिया का उदार मिशन ऐसे समय में और भी जरूरी हो जाता है जब समाज अक्सर इंसान की पवित्र गरिमा को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह गरिमा पैसे, काबिलियत और सामाजिक प्रतिष्ठा से निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हर इंसान ईश्वर की छवि में बनाया गया है और वे उससे प्यार करते हैं। संत पापा ने कहा कि इंसान कलीसिया की कामों के केंद्र में है। संत पापा ने अपना संदेश समाप्त करते हुए कहा कि वे अपने पुरोहितों के साथ अपना मिशन जारी रखें, ख्रिस्तीय आशा के भरोसेमंद गवाह बनें और अपनी सेवा के जरिए ईश्वर के राज्य के न्याय और शांति को फैलाएं। इसके बाद संत पापा लियो ने शाम को सागरदा फमिलिया महागिरजा घर में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया।

संत पापालियो चौदहवें ने स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा में बार्सिलोना के साग्रादा फामिलिया महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए नवनिर्मित येसु ख्रिस्त के क्रूस मीनार का उद्घाटन किया। आज साग्रादा फामिलिया का महागिरजाघर हम सबों को अपना द्वार खोलते हुए मानो यह अपनी बाहों को खोल रहा हो। इस सुंदर शहर में इस बलिवेदी में ईश्वर के वचनों को सुनने हेतु स्वागत करता है, जो हमें ईश्वर के एक परिवार का अंग बनाता है, जहां हम यूखारिस्त में उनके जीवन द्वारा पोषित किए जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यह गिरजाघर बहुत सारे पत्थरों से बनी एक इमारत है, एक घर जो एक परियोजना के हिसाब से वर्षों में निरंतर बढ़ता रहा है। हम सभी इस जीवित पत्थर के अंग हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यह कार्य हमारे जीवन में समाहित है, जिसे ईश्वर एक उत्कृष्ट कृति के रूप में देखते हैं, जिसे हमें एक साथ करना है और जिसके लिए वे हमें सहयोग करने को बुलाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, हम यीशु पर विश्वास करते हुए युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए निर्दोषों को नहीं मार सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए दुखियों, रोते हुए लोगों और मुसीबतों से भागने वालों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। आज की शाम आइए तब हम यीशु के क्रूस की याद करें, जो इस महागिरजाघर का मुकुट है। यह अंतिम व्यक्ति का क्रूस है जो प्रथम बनता है। 3 सदियों से साग्रादा फामिलिया इस साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। जन्म के द्वारा सर्वप्रथम हमारे लिए वे अंतिम बनते हैं। अपने बलिदान, अपने दुख भोग के द्वारा वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी मृत्यु हमें जीवन प्रदान करती है, जिसके द्वारा वे हमें दिव्य महिमा के भागीदार बनाते हैं। जैसे हम यीशु ख्रिस्त के मीनार की प्रशंसा करते हैं, हम अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हैं, उनकी ओर जो हमें ईश्वर और स्वयं हमारी सच्चाई को प्रकट करते हैं। इस भांति क्रूस का मीनार हमारे लिए करुणा का एक झंडा बनता है, क्योंकि ईश्वर हमें इसी रूप में प्रेम करते हैं। मृत्यु को हमारे लिए आशा की एक निशानी में परिवर्तित कर देते हैं। यीशु के क्रूस में हमारा विश्वास अपने शिखर तक पहुंचता है। संत पापा ने कहा कि यह विश्वास है जो पत्थरों को आकार देता है और इस इमारत को अर्थपूर्ण बनाता है, जिसमें हम साथ रहते हैं। वे एक शिल्पकार हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में अपनी शानदार छाप छोड़ी है। ईश्वर के रूप में स्पष्ट मानव उनकी कलाकृति का प्रत्युत्तर देता है। इस तरह कलाकार हुनर को प्रशंसा में और सृजनात्मकता को सृष्टिकर्ता के साक्ष्य में बदल देता है। एक शिल्पकार के रूप में विश्वास के प्रेरित पूजनीय अंतोनी गाउदी ने इस स्थान का निर्माण किया, इस उद्देश्य से कि वे ईश्वर के रहस्यमय जीवन की चर्चा कर सकें। इस भांति उन्होंने हमारे लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ प्रस्तुत किया है, जो हमें यीशु से मिलन को अग्रसर करता, जो हमारे खातिर जन्मे, मरे और पुनर्जीवित हुए। गाउदी के संग जैसे कि हम उनकी मृत्यु की सालगिरह मनाते हैं, हम इस बात की याद करते और इस संध्या बेला में उनके सहयोगियों और हिताशियों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलाकारों और मजदूरों के सहयोग से एक अद्वितीय कलाकृति का निर्माण किया गया है, जो पत्थरों, रंगों और रोशनी से बनी एक शानदार शिक्षा को प्रस्तुत करती है। इस समय जब ख्याति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह हमारे लिए और भी स्पष्ट हो जाता है कि कला और सुंदरता कैसे सुसमाचार प्रचार के खास माध्यम बनते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस गिरजाघर की सुंदरता हमें हमारे गुरु और स्वामी से उनके सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की कला सीखने को प्रेरित करती है। अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हुए जो क्रूसित और पुनर्जीवित हुए, आइए हम अपने को उन्हें उठाने हेतु समर्पित करें जो गिरे पड़े हैं,
और ऐसा करते हुए हम इस बात को घोषित करेंगे कि साग्रादा फामिलिया विश्वास का सबसे ऊंचा गिरजाघर है, दुनिया की गिनती में अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि उन तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए जो कतालोनिया की तीर्थयात्रा करते हैं, जिसे क्रूस उनका मार्ग प्रशस्त करे। वैसे ही जैसे एक दीप उद्दीप्त होता है और हम दुल्हे के लौटने का इंतजार करते हैं।

0: बार्सिलोना में अपनी प्रेरित यात्रा का दूसरा पड़ाव समाप्त करते हुए संत पापा लियो आज सुबह लगभग 7:30 बजे हवाई अड्डा जाने के लिए महाधर्माध्यक्ष निवास से प्रस्थान किए, जहां उन्हें कुछ स्थानीय अधिकारियों से अभिवादन मिला। इसके बाद लियोन इबेरिया A320 विमान में सवार हो गए। अपनी विमान यात्रा के दौरान टेलीग्राम में संत पापा लियो ने मोरक्को के राजा मोहम्मद षष्ठम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी और दिल से उनका आशीर्वाद मांगा। संत पापा लियो 14वें ने पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति अंतोनियो जोस सेगुरो को प्रेषित संदेश में पुर्तगाल के लिए भी प्रार्थना और आशीर्वाद भेजा। संत पापा 3.5 घंटे की विमान यात्रा के बाद ग्रान कनारिया ग्रैंडो हवाई अड्डे पर उतरे। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। कनारी आइलैंड में संत पापा के दौरे का पहला कार्यक्रम ग्रान कनारिया के दक्षिणी तट पर अर्गुएने बंदरगाह पर प्रवासी स्वागत केंद्रों के साथ मीटिंग है। इस बंदरगाह को अभी भी शर्म का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2020 में कोविड इमरजेंसी शुरू होने के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,000 प्रवासी वहां पहुंचे थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी बंदरगाह में जाने की इजाजत नहीं थी, फिर कारितास ने जहाज टूटने पर मदद करने के लिए अपने काम जारी रखे, जिसमें खाना और दवाई सप्लाई करना था। संगठन का एक स्वयंसेवक उन लोगों में शामिल होगा जो संत पापा के साथ अपनी बातें साझा करेंगे।
1: स्पेन की प्रेरित यात्रा के तीसरे पड़ाव पर 11 जून को पोप लियो 14वें ने ग्रान कैनरी के पोर्टो दी अर्गुएन में अप्रवासियों के साथ काम करने वाले संगठनों से मुलाकात की। कुछ लोगों के साक्ष्य सुनने के उपरांत मत्ती रचित सुसमाचार से पाठ पढ़े जाने के बाद, जिसमें अंतिम महान्याय के बारे बताया गया है, संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने अभी अभी सुसमाचार पाठ के सबसे कठिन अंशों में से एक को सुना। हम जानते हैं कि इसी अध्याय में एक चेतावनी भी है, जिसे कोई भी विश्वासी हल्के में नहीं ले सकता। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। पोप ने कहा, आज समुद्र के किनारे ईश्वर का यह वचन पुष्ट हो जाता है। यहाँ बहुत सारे घायल जीवन आते हैं, जिनका लगभग सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं खो सकती। यहाँ सुसमाचार हमें दर्शकों की हमारी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालता है और हमारे सामने एक भाई या बहन को रखता है जो आगंतुक है। यह हमसे पूछता है कि क्या हमने उन लोगों में मसीह को पहचाना जो रेगिस्तान, रात और समुद्र का सामना करने के बाद डर, भूख और हिंसा से घिरे हुए जहाज से उतरते हैं। पोप ने अपनी जिम्मेदारी के प्रतीक चिन्ह अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, आप देख सकते हैं मैंने मछुआरे की अंगूठी पहनी है। इसका नाम ही हमें गलीलिया सागर की ओर ले जाता है, जहाँ ख्रिस्त ने पेत्रुस को बुलाया और उनसे कहा था, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। कलीसिया ने इस वाक्यांश की व्याख्या अपने मिशन की एक छवि के रूप में किया है, लेकिन यहाँ और एल हियरो जैसे जगहों पर ख्रिस्त का आदेश खास तौर पर शक्तिशाली और दर्दनाक है। यह द्वीप जो आकार में छोटा किंतु इंसानियत में बड़ा है, हजारों लोगों के आने का गवाह रहा है, जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था और एक नाजुक नाव के हवाले कर दिया गया था। यहाँ लोगों को समुद्र से बचाया जाता है और पानी से बेजान लाशें निकाली जाती हैं। यही कारण है कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी इन बंदरगाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कलीसिया ऐसे जगहों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां भूख, प्यास, हिंसा, डर या देश के निष्कासन जैसे स्थिति मानव प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। यीशु के शिष्य रात में पुकारने वालों की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाइबल की भाषा में समुद्र खतरे, अंधेरे और उथल पुथल की निशानी हो सकता है। आज भी इन समुद्रों में राक्षस सिपे हैं, माफिया के रूप में जो निराशा से फायदा उठाते, तस्कर के रूप में जो औरतों और बच्चों को गुलाम बनाते हैं, और उन लोगों के रूप में जिनकी उदासीनता से गरीब लोग शोषण या भुला दिए जाने के द्वारा निगल लिए जाते हैं। लेकिन संत पापा ने याद दिलाया कि समुद्र की ताकत से विश्वास कम नहीं होता। हम एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो गड़बड़ी को ठीक करते, समुद्र को नियंत्रित करते और ऐसे रास्ते को भी खोल देते हैं जहां मौत हावी होने के समान लगती है। अगर ख्रिस्त समुद्र को शांत रहने का आदेश देते हैं तो कलीसिया उन लोगों के बारे में चुप नहीं रह सकती जिन्हें उसके जल में छोड़ दिया गया है। संत पापा ने टीटो और मरिया के गवाहों को लेते हुए कहा, आपके शब्द हमें दिखाते हैं कि हमारी नज़र का बदलना तब शुरू होता है जब अप्रवासी सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक श्रेणी या एक आंकड़ा नहीं रह जाता। तभी हम समझ सकते हैं कि वह छोटी बच्ची हमारी बेटी हो सकती है और वे चेहरे हमारे परिवार के हिस्से। तब हमारे अंतःकरण के पास कोई बहाना नहीं होता। दया छोटे छोटे कामों से शुरू होती है। मकसद सब कुछ हल करना नहीं है बल्कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपना है और उन जगहों पर उपस्थित रहना है जहां लोग परेशान हैं, जहां संसाधन कम हैं, जहां कोई आम भाषा नहीं है। संत पापा ने कहा, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो बचाव कार्य में हिस्सा लेते हैं। या उन शोषण के लिए तस्करी के शिकार ब्लेसिंग के साक्ष्य को लेते हुए पोप ने कहा, भले ही आप आज यहाँ नहीं हैं लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ है। अपनी कहानी हमें साझा करने के लिए धन्यवाद। आपके नाम का मतलब है आशीष और यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान का जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई भी इसे खरीद, बेच, इस्तेमाल या त्याग नहीं सकता क्योंकि सृष्टिकर्ता की छवि और स्वरूप हर इंसान में चमकती है। आपने हमें बताया कि आपने अपना देश इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप छोड़ना चाहती थी बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। आपके शब्दों से हम उन बहुत सारे लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्हें गरीबी, युद्ध, धमकियों या शोषण की वजह से देश छोड़ना पड़ा है। अगर दूसरों ने आपके शरीर की कीमत लगाई है तो जान लें कि ईश्वर ने आपकी अत्यधिक मूल्य को पहचानना कभी बंद नहीं किया है। आपका जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया। आपका जीवन ईश्वर का है जिसने आपको एक ऐसी प्रतिष्ठा दी है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। आप्रवासियों को संबोधित कर पोप ने कहा, प्यारे आप्रवासियों, आपसे कुछ और कहने से पहले मैं आपकी इजाज़त के आगे सिर झुकाना चाहता हूँ। आप सिर्फ संख्या या दस्तावेज नहीं हैं, आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे परिवार और घर छोड़ा है। आपके सपने हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने का किसी को कोई हक नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन की देखरेख होनी चाहिए। अपना जीवन उन लोगों के हवाले ना करें जो सौदा करते हैं। तब कलीसिया को चुनौती देते हुए पोप ने कहा, आप प्रवासियों का स्वागत करना छोटी बात नहीं हो सकती जिससे कुछ ही स्वयंसेवकों पर छोड़ा जाए। अंत में प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा, जीवन की शाम में ईश्वर जो हमारे प्यार के आधार पर हमारा न्याय करेंगे, हमें आज गरीबों और विदेशियों में उन्हें पहचानने की कृपा दें। आज यहाँ समुद्र के किनारे आने वाला हर व्यक्ति पूछता है कि हमारी मानवता में क्या बचा है। देर सवेर यह पता चल ही जाएगा कि हमने जीवन की रक्षा की या हमने उदासीनता अपनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसके बाद संत पापा ग्रान कनारिया में टेनेरिफ के साथ स्थानीय कलीसिया धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों से मिलने के लिए संत अन्ना महागिरजाघर जाएंगे और ग्रान कनारिया के स्टेडियम में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृत का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु येसु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र

0: पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्पेन में संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा लियो 14वें स्पेन की अपनी 7 दिवसीय प्रेरित यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को ग्रैंड कैनरी से विदा ले संत पापा ने तेनेरिफ के नॉर्ते लॉस रोदेओस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान किया। स्मरण रहे कि रोम से 6 जून को शुरू हुई संत पापा लियो 14वें की स्पेन प्रेरित यात्रा उनकी 4थी विदेश यात्रा है, जिसके दौरान वे मैड्रिड, बार्सिलोना, ग्रैंड कैनरी और तेनेरिफ द्वीपों का दौरा कर रहे हैं। ग्रैंड कैनरी द्वीप पर संत पापा लियो का अंतिम कार्यक्रम यहां के विशाल स्टेडियम में ख्रीस्त त्याग समारोह रहा, जिसमें लगभग 40,000 श्रद्धालु उपस्थित हुए। ग्रैंड कैनरी द्वीप अफ्रीका के पश्चिमी तट का निकटवर्ती स्पानी द्वीप है, जो यूरोप में नई जिंदगी की तलाश कर रहे आप्रवासियों के आगमन के लिए मशहूर हो गया है। लगभग पूरी तरह से गुरुवार का दिन आप्रवासियों की चर्चा और चिंतन को समर्पित रहा। इस व्यस्त दिन की समाप्ति पर एक बार फिर संत पापा लियो ने उपस्थित श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अपने उन भाइयों और बहनों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने समुद्र में अपनी जान गंवा दी थी। ग्रैंड कैनरी स्टेडियम में गुरुवार संध्या छोटे छोटे स्थानीय समुदाय भी मौजूद थे, जिनमें चीनी झंडों और फिलिपिनी पोस्टरों पर निजी भाषाओं में वेलकम लिखा देखा जा सकता था। इसी तरह सैकड़ों स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में लगे थे, कोई पानी की बोतलें बांटते तो कोई विजिट ऑफ हिज होलीनेस पोप लियो 14th टू ग्रैंड कनारिया लिखे रुमालों को वितरित कर रहे थे। यह पहली बार था जब किसी संत पापा ने 2 महाद्वीपों के बीच का पुल कहलाने वाले ग्रैंड कैनरी द्वीप पर ख्रीस्त त्याग की अध्यक्षता की थी।
1: संत पापा लियो ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के 6वें दिन ग्रैंड कैनरिया स्टेडियम में यूखारिस्टीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने प्रथम पाठ पर चिंतन करते हुए कहा कि ईश्वर इसराइल को अपने शर्तहीन प्रेम की याद दिलाते हैं। यह तोल मोल का प्रेम नहीं है, ना ही सिर्फ मनोभाव रूपी प्रेम, भलाई तक ही सीमित रहने वाला प्रेम नहीं, बल्कि यह वह प्रेम है जो हमें पूरी तरह अपने में समाहित करता है। संत पापा ने कहा, यह एक अद्वितीय आदान प्रदान है जिसके द्वारा सुसमाचार हमें अपने को आकर्षित होने, ईश्वर के अनंत प्रेम को उदारता में बदलने का निमंत्रण देता है, जिसके द्वारा हम उनकी सेवा हर दिन करते हैं उन भाई बहनों में जिन्हें वे हमारे मार्ग में लाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी समृद्धि हमें दूसरों की जरूरतों के संबंध में अंधा बना देती है और हमें यह सोचने में अग्रसर करती है कि हमारी खुशी और परिपूर्णता दूसरों के बदले हमारे ऊपर निर्भर करता है। संत पापा ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है और जहाँ नम्रता है वहाँ प्रेम है। संत पापा ने कहा, आइए हम इस बात की याद करें कि हम दुनिया में यीशु की जीवित उपस्थिति हैं, अतः हम एक दूसरे को देखें, हम दूसरों की चिंता करें।
0: ग्रैंड कैनरी से शुक्रवार प्रातः लगभग 40 मिनटों वाली हवाई यात्रा के उपरांत संत पापा लियो 14वें तेनेरिफ के नॉर्ते लॉस रोदेओस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पधारे, जहां वरिष्ठ प्रशासनिक और कलीसियाई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तेनेरिफ अटलांटिक महासागर स्थित एक स्पानी द्वीप है, जो स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के स्वायत्त समुदाय से संबंधित है। द्वीप की कुल आबादी लगभग 1,00,000 है तथा स्पेन के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ के लोग भी कैथलिक धर्मानुयायी हैं। विगत वर्षों में आप्रवासियों एवं पर्यटकों के आगमन से अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू तथा बौद्ध धर्मों के अनुयायियों ने भी यहां अपना घर बसा लिया है। शुक्रवार को सांता क्रूज दे तेनेरिफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे संत पापा लियो 14वें लास राइसिस पहुंचे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने ला लगुना स्थित लास राइसिस अर्थात जड़ें नामक आप्रवास केंद्र का दौरा किया, जहाँ इस समय 685 आप्रवासियों को शरण प्रदान की जा रही है। इस आप्रवास केंद्र का संचालन स्पानी समावेशन मंत्रालय और आचेम नामक मानवाधिकार संगठन द्वारा किया जा रहा है। आचेम मानवाधिकार संगठन के निर्देशक ने हमारे संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, युद्ध से या किसी मुश्किल निजी हालात से बचना इंसान की एक आम इच्छा होती है। हमें प्रेम और एकता के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे इस केंद्र को लास राइसिस यानी कि जड़ें कहा जाता है, जो किसी के देश की जानी पहचानी जड़ों के कट जाने के बाद नई जड़ें बनाने की संभावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रायः यह एक भ्रम होता है, किंतु कभी कभी यह कुछ ऐसा होता है जो सच हो जाता है। तेनेरीफ द्वीप पर ला लगुना नगर पालिका के अधीन एक पूर्व सैन्य बैरक में आप्रवासियों के लिए अस्थायी स्वागत केंद्र की स्थापना कर दी गई है, जो अब पश्चिमी अफ्रीका के माली, सेनेगल, गाम्बिया, कोनाक्री आदि देशों से स्पानी समुद्री तटों पर पहुंचने वाले सैकड़ों आप्रवासियों का पहला पड़ाव बन गया है। यहीं से शुक्रवार प्रातः 12 जून को संत पापा लियो 14वें ने अपनी स्पानी प्रेरित यात्रा के अंतिम दिन का शुभारंभ किया।
2: टेनेरिफ द्वीप पहुंचने पर संत पापा लियो 14वें ने टेनेरिफ की एक म्यूनिसिपालिटी सान क्रिस्टोबाल डे ला लगुना में लास राइसेस स्वागत केंद्र के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा का स्वागत सान क्रिस्टोबाल डे ला लगुना के धर्माध्यक्ष संतियागो एलोय अल्बर्टो ने किए और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हाल के सालों में अफ्रीकी महाद्वीप से हजारों लोग यूरोप की दक्षिणी सीमा पर इन द्वीपों में आए हैं। हजारों लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और आज भी अमानवीय एवं खतरनाक सफर का सामना कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष संतियागो के शब्दों के बाद स्पेन की सामाजिक सुरक्षा एवं प्रवासन मंत्री एल्मा साइज डेलगाडो के शब्द आते हैं, जो इस विश्वास से कि हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं नए हैं, पूरे इतिहास में स्पेन की बदलती प्रवृत्ति को दोहराते हैं, जो आज इंसानियत, नियमितता और सह अस्तित्व पर आधारित प्रवासन नीति में दिखता है। फिर केंद्र के निदेशक फ्रांसिस्को नवारो ने बताया कि इस केंद्र ने 2021 में खुलने के बाद से 45,000 से ज्यादा लोगों का स्वागत कर चुका है और लगभग 600 लोगों को नौकरी दे चुका है। संत पापा के समक्ष कुछ प्रवासियों ने नवीनतम साक्ष्य साझा किया। प्रवासियों के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आज हम कलीसिया में येसु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। हम ख्रिस्तियों के लिए येसु का हृदय प्रत्येक मनुष्य के लिए ईश्वर के दयालु और अनंत प्रेम का प्रतीक है। इस संदर्भ में यह संभव है कि हम एक साथ आ सकें, एक दूसरे को देख सकें और सबसे बढ़कर यह पहचान सकें कि ईश्वर का प्रेम कोई सीमा नहीं जानता, कोई भेदभाव नहीं करता और हमें एकता में एक साथ लाता है। संत पापा ने कहा कि जब वे उनके चेहरों को देखते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं तथा इतनी सारी कठिनाइयों से घिरे दिलों के बारे में भी सोचते हैं, साथ ही उनको अन्य खुले उदार और दयालु दिलों से मिले प्यार से सांत्वना भी मिलती है। मसीह का हृदय पीड़ा से भर गया था और कुछ दयालु लोगों ने भी उसे सांत्वना दी और उसके दर्द को कम किया। संत पापा ने भले समारी के दृष्टांत का हवाला देते हुए कहा कि येसु ने सेवा के एक काम का उदाहरण देकर प्यार की सार्वभौमिकता को समझाया। ईश्वर के प्यार से प्रेरित होकर जो हमें दूसरों के जख्म भरने और जो लोग दुख झेल रहे हैं उनके प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं। संत पापा ने कहा कि संत ब्रदर पीटर और अखियेता के संत जोसेफ इन कनारी द्वीप से अमेरिका में सुसमाचार का प्रचार करने निकल पड़े, जिसे मिशनरी के नए रास्ते खुले। वे भी ऐसे प्रवासी थे जो अनजान दुनिया में गए और विश्वास, आशा और दयालुता को अपनी सबसे बड़ी दौलत के तौर पर ले गए और जो कुछ उनके पास था उसे साझा किया और उसी तरह उन्हें जो नई चीजें दी गई उनको सहृदय स्वीकार किया। संत पापा ने उन्हें आमंत्रित करते हुए कहा, आप अपनी इंसानियत, अपने सपनों और अपनी संस्कृति के खजाने को साझा करें जो आप इन द्वीपों में लाए हैं, और जो कुछ भी आपको दिया जाता है उसे लेने के लिए तैयार रहें। संत पापा ने कहा कि हम सब प्रवासी हैं, क्योंकि हम सब अपने स्वर्ग के घर की ओर जाने वाले यात्री हैं। आइए हम सब मिलकर इस सफर को सबके लिए और मानवीय बनाने में मदद करें। संत पापा ने इस स्वागत केंद्र का नाम लास राइसेस, मतलब जड़े पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस जो आपके साथ रहना चाहते थे, जड़ों की छवि का इस्तेमाल करके अपनी शुरुआत को याद रखने, एक साथ रहने और प्रभु पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देना पसंद करते थे, क्योंकि जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे उस पेड़ की तरह हैं जो पानी के पास लगा हो और जिसकी जड़ें नदी के किनारे फैली हों और उसके पत्ते हरे रहेंगे। संत पापा ने कहा कि जड़ों की यह छवि आपको प्रभु में मजबूती से बने रहने के लिए मदद करे, ताकि कोई भी तूफान आपको उनकी मौजूदगी से दूर ना कर सके। अंत में संत पापा ने अपने दिल में उन्हें रखने और अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने की बात करते हुए अपना आशीर्वाद दिया और उन सभी को माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में समर्पित किया।
3: पोप लियो 14वें ने स्पेन की प्रेरित यात्रा के अंतिम दिन तेनेरिफ के प्लाजा दिल क्रिस्तो दिला लगुना में आप प्रवासियों के एकीकरण पर काम करने वाले संगठनों से मुलाकात की। एक पुरोहित एवं तीन अप्रवासियों का साक्ष्य सुनने के बाद पोप लियो ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस धर्म प्रांत के मुख्यालय सन क्रिस्तोबल दिला लगुना में आपके साथ इस पल को व्यतीत करना मेरे लिए खुशी की बात है। इस शहर के बारे में जो कहा गया है उससे मैं विस्मित हूँ। यह बिना दीवारों वाला एक खुला शहर है। शायद यह बात हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जिन रुकावटों को तोड़ना सबसे मुश्किल होता, वे हमेशा पत्थर नहीं होती। कभी कभी वे हमारे नजरिए में, डर में या उदासीनता में होती हैं। इन द्वीपों को घेरे हुए यह समुद्र हमारे लिए ऐसी कहानियां लाता है, दर्द की कहानियां, उम्मीदों की कहानियां और खोज की कहानियां। बिना दीवारों वाले शहर में दिल भी उन लोगों का स्वागत करने के लिए खुल जाता है जो इन कहानियों को अपने साथ लाते हैं। इसीलिए हमें सामीप्य की भाषा सीखने की जरूरत है। ब्रेल और स्पर्श योग्य दूसरी तरह की लिखावट हमें याद दिलाती हैं कि शब्दों को छूकर भी पढ़ा जा सकता है। उसी तरह जुड़ने के लिए एक अलग तरीके से पढ़ने सीखना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरें देखती हैं फिर भी पहचान नहीं पाती। वे एक चेहरे को एक संख्या में, एक कहानी को एक दस्तावेज में और विविधता को दूरी में बदल देते हैं। इसलिए सुसमाचार हमें असलियत को पढ़ने का एक गहरा तरीका सिखाता है जो सामीप्य, धैर्य एवं मदद करने, साथ देने, मार्गदर्शन करने, सिखाने और रास्ता खोलने में सक्षम हाथों से शुरू होता है। जहाँ मानव दुख को प्यार से छुआ जाता है, वहाँ ख्रिस्त हमें यह सुनिश्चित करते हैं कि वे भूखे, प्यासे, नंगे, बीमार, कैदी और अजनबी में मौजूद हैं। ख्रिस्त उदात्त विश्वास के दिल में डाले गए ईश्वर के प्यार से बढ़ती है। इसी वजह से जरूरतमंदों की मौजूदगी में विश्वास मजबूत होता है और ख्रिस्त के लिए प्यार कामों में बदल जाता है, और यह सिर्फ दान या भलाई के काम से बढ़कर है। इसे एक प्रतिबद्धता कहा जाता है और इसे एक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। मदद घाव पर मरहम पट्टी लगाती है और एकीकरण भविष्य को फिर से बनाता है। संत पापा ने स्पष्ट करते हुए कहा, एकीकरण का मतलब यह नहीं है कि जो लोग आते हैं उनका इतिहास मिटा दिया जाए या उनसे वह सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए कहा जाए जो उनकी यादों का हिस्सा है। ना ही इसका मतलब एक दूसरे से अलग थलग समानांतर दुनिया बनाना है जहां लोग साथ रहते लेकिन एक दूसरे से नहीं मिलते। एकीकरण दोनों की यात्रा है। जो लोग आते हैं वे एक नई भूमि पर रहना सीखते हैं, और जो लोग उनका स्वागत करते हैं वे अपनी पहचान को कमजोर किए बिना या मुलाकात के लिए अपने दिल बंद किए बिना अपने घरों को बढ़ाना सीखते हैं। संत पापा ने स्वागत करने वाले और स्वागत किए जाने वाले दोनों के कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा कि हर स्वागत करने वाले समाज की आगंतुकों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। वहीं जिनका स्वागत किया जाता है उनका सम्मान तब फलता फूलता है जब यह एक फर्ज बनता है और दूसरों के साथ मिलकर निर्माण की सच्ची इच्छा बन जाता है। अंत में संत पापा ने एकीकरण में सहयोग करने वालों से कहा, आइए हम अपनी नजरें उनकी ओर करें, उन लोगों से मुख ना मोड़ें जो परेशान हैं, हम प्रभु की ओर देखें ताकि हम अपने भाइयों और बहनों को उनकी नजरों से देखना सीख सकें। आपकी सेवा को बनाए रखें और इस भूमि को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हर कोई एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचाने। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर शुक्रवार को सांता क्रूज दे तेनेरिफे में पवित्र हृदय के महोत्सव का यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया।
4: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
1: आज के इस दिन में हमारा एक साथ आना एक कृपा है जब हम यीशु के हृदय को इतिहास के हृदय में प्रकट होता पाते हैं। मानव ईश्वर के संग एकता में बने रहने को बुलाया गया है और निष्ठा में स्वार्थहीन अपने को देने के द्वारा हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। उन्होंने कहा, आज बहुत से लोग अपने में एक वृहद असंतुलन का अनुभव करते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा क्रियाशील होने को बाध्य करता है। यह उनमें व्यस्तता के दबाव उत्पन्न करता है और इस निरंतरता में जल्द ही वे आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करने लगते हैं। मानव का हृदय क्या खोजता है? वे जो हर क्षण अधिक आनंदित होती और बेहतर जीवन जीते हैं वे लोग हैं जो यहाँ वहाँ डुबकी लगाने का परित्याग करते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उनके पास नहीं है। वे इस बात का अनुभव करते हैं कि हर व्यक्ति और हर चीज की प्रशंसा करने का अर्थ क्या होता है। वे छोटी से छोटी चीजों से सीखते और उनका आनंद उठाते हैं। संत पापा ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
4: Gracias por lo que son. Gracias por lo que hacen.
1: आप जो हैं और आप जो करते हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। संत पापा ने विश्वासी समुदाय से कहा, आप युवाओं और किशोरों के प्रति, धनी और गरीबों, स्थानीय निवासियों और अतिथियों के प्रति सजग रहें। उन सभी को ऐसी नजर से देखने की जरूरत है जो दिखावे से परे हो और उनके बेचैन हृदयों की गहराई को पहचानती हो, जो अक्सर पहले से ही शायद अचेतना में ईश्वर के राज्य और उनके न्याय की ओर अभिमुख हैं। यह आप सबों में झलके कि ईश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम में रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उनमें।
4: Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él.
1: यह सुसमाचार का हृदय है, यीशु का हृदय। संत पापा ने शुभकामनाएं देते हुए अपने प्रवचन के अंत में कहा, इस प्रेम के समुद्र को सबों के लिए खोलें, यही मेरी इच्छा और प्रार्थना है आपके लिए और उन सबों के लिए जो आपको जानेंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्पेन में संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा लियो 14वें स्पेन की अपनी 7 दिवसीय प्रेरित यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को ग्रैंड कैनरी से विदा ले संत पापा ने तेनेरिफ के नॉर्ते लॉस रोदेओस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान किया। स्मरण रहे कि रोम से 6 जून को शुरू हुई संत पापा लियो 14वें की स्पेन प्रेरित यात्रा उनकी 4थी विदेश यात्रा है, जिसके दौरान वे मैड्रिड, बार्सिलोना, ग्रैंड कैनरी और तेनेरिफ द्वीपों का दौरा कर रहे हैं। ग्रैंड कैनरी द्वीप पर संत पापा लियो का अंतिम कार्यक्रम यहां के विशाल स्टेडियम में ख्रीस्त्याग समारोह रहा, जिसमें लगभग 40,000 श्रद्धालु उपस्थित हुए। ग्रैंड कैनरी द्वीप अफ्रीका के पश्चिमी तट का निकटवर्ती स्पानी द्वीप है, जो यूरोप में नई जिंदगी की तलाश कर रहे आप्रवासियों के आगमन के लिए मशहूर हो गया है। लगभग पूरी तरह से गुरुवार का दिन आप्रवासियों की चर्चा और चिंतन को समर्पित रहा। इस व्यस्त दिन की समाप्ति पर एक बार फिर संत पापा लियो ने उपस्थित श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अपने उन भाइयों और बहनों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने समुद्र में अपनी जान गंवा दी थी। ग्रैंड कैनरी स्टेडियम में गुरुवार संध्या छोटे छोटे स्थानीय समुदाय भी मौजूद थे, जिनमें चीनी झंडों और फिलिपिनी पोस्टरों पर निजी भाषाओं में वेलकम लिखा देखा जा सकता था। इसी तरह सैकड़ों स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में लगे थे। कोई पानी की बोतलें बांटते तो कोई विजिट ऑफ हिज होलीनेस पोप लियो 14th टू ग्रैंड कनारिया लिखे रुमालों को वितरित कर रहे थे। यह पहली बार था जब किसी संत पापा ने 2 महाद्वीपों के बीच का पुल कहलाने वाले ग्रैंड कैनरी द्वीप पर ख्रीस्त्याग की अध्यक्षता की थी।
1: संत पापा लियो ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के 6वें दिन ग्रैंड कैनरिया स्टेडियम में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने प्रथम पाठ पर चिंतन करते हुए कहा कि ईश्वर इसराइल को अपने शर्तहीन प्रेम की याद दिलाते हैं। यह तोल मोल का प्रेम नहीं है, ना ही सिर्फ मनोभाव रूपी प्रेम, भलाई तक ही सीमित रहने वाला प्रेम नहीं, बल्कि यह वह प्रेम है जो हमें पूरी तरह अपने में समाहित करता है। संत पापा ने कहा, यह एक अद्वितीय आदान प्रदान है जिसके द्वारा सुसमाचार हमें अपने को आकर्षित होने, ईश्वर के अनंत प्रेम को उदारता में बदलने का निमंत्रण देता है, जिसके द्वारा हम उनकी सेवा हर दिन करते हैं उन भाई बहनों में जिन्हें वे हमारे मार्ग में लाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी समृद्धि हमें दूसरों की जरूरतों के संबंध में अंधा बना देती है और हमें यह सोचने में अग्रसर करती है कि हमारी खुशी और परिपूर्णता दूसरों के बदले हमारे ऊपर निर्भर करता है। संत पापा ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है और जहाँ नम्रता है वहाँ प्रेम है। संत पापा ने कहा, आइए हम इस बात की याद करें कि हम दुनिया में यीशु की जीवित उपस्थिति हैं, अतः हम एक दूसरे को देखें, हम दूसरों की चिंता करें।
0: ग्रैंड कैनरी से शुक्रवार प्रातः लगभग 40 मिनटों वाली हवाई यात्रा के उपरांत संत पापा लियो 14वें तेनेरिफ के नॉर्ते लॉस रोदेओस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पधारे, जहां वरिष्ठ प्रशासनिक और कलीसियाई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तेनेरिफ अटलांटिक महासागर स्थित एक स्पानी द्वीप है, जो स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के स्वायत्त समुदाय से संबंधित है। द्वीप की कुल आबादी लगभग 1,00,000 है तथा स्पेन के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ के लोग भी कैथलिक धर्मानुयायी हैं। विगत वर्षों में आप्रवासियों एवं पर्यटकों के आगमन से अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू तथा बौद्ध धर्मों के अनुयायियों ने भी यहां अपना घर बसा लिया है। शुक्रवार को सांता क्रूज दे तेनेरिफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे संत पापा लियो 14वें लास राइसिस पहुंचे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने ला लगुना स्थित लास राइसिस अर्थात जड़ें नामक आप्रवास केंद्र का दौरा किया, जहाँ इस समय 685 आप्रवासियों को शरण प्रदान की जा रही है। इस आप्रवास केंद्र का संचालन स्पानी समावेशन मंत्रालय और आचेम नामक मानवाधिकार संगठन द्वारा किया जा रहा है। आचेम मानवाधिकार संगठन के निर्देशक ने हमारे संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, युद्ध से या किसी मुश्किल निजी हालात से बचना इंसान की एक आम इच्छा होती है। हमें प्रेम और एकता के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे इस केंद्र को लास राइसिस यानी कि जड़ें कहा जाता है, जो किसी के देश की जानी पहचानी जड़ों के कट जाने के बाद नई जड़ें बनाने की संभावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रायः यह एक भ्रम होता है, किंतु कभी कभी यह कुछ ऐसा होता है जो सच हो जाता है। तेनेरीफ द्वीप पर ला लगुना नगर पालिका के अधीन एक पूर्व सैन्य बैरक में आप्रवासियों के लिए अस्थायी स्वागत केंद्र की स्थापना कर दी गई है, जो अब पश्चिमी अफ्रीका के माली, सेनेगल, गाम्बिया, कोनाक्री आदि देशों से स्पानी समुद्री तटों पर पहुंचने वाले सैकड़ों आप्रवासियों का पहला पड़ाव बन गया है। यहीं से शुक्रवार प्रातः 12 जून को संत पापा लियो 14वें ने अपनी स्पानी प्रेरित यात्रा के अंतिम दिन का शुभारंभ किया।
2: टेनेरिफ द्वीप पहुंचने पर संत पापा लियो 14वें ने टेनेरिफ की एक म्यूनिसिपालिटी सन क्रिस्टोबाल डे ला लगुना में लास राइसेस स्वागत केंद्र के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा का स्वागत सान क्रिस्टोबाल डे ला लगुना के धर्माध्यक्ष संतियागो एलोय अल्बर्टो ने किए और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हाल के सालों में अफ्रीकी महाद्वीप से हजारों लोग यूरोप की दक्षिणी सीमा पर इन द्वीपों में आए हैं। हजारों लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और आज भी अमानवीय एवं खतरनाक सफर का सामना कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष संतियागो के शब्दों के बाद स्पेन की सामाजिक सुरक्षा एवं प्रवासन मंत्री एल्मा साइज डेलगाडो के शब्द आते हैं, जो इस विश्वास से कि हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं नए हैं, पूरे इतिहास में स्पेन की बदलती प्रवृत्ति को दोहराते हैं, जो आज इंसानियत, नियमितता और सह अस्तित्व पर आधारित प्रवासन नीति में दिखता है। फिर केंद्र के निदेशक फ्रांसिस्को नवारो ने बताया कि इस केंद्र ने 2021 में खुलने के बाद से 45,000 से ज्यादा लोगों का स्वागत कर चुका है और लगभग 600 लोगों को नौकरी दे चुका है। संत पापा के समक्ष कुछ प्रवासियों ने नवीनतम साक्ष्य साझा किया। प्रवासियों के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आज हम कलीसिया में येसु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। हम ख्रिस्तियों के लिए येसु का हृदय प्रत्येक मनुष्य के लिए ईश्वर के दयालु और अनंत प्रेम का प्रतीक है। इस संदर्भ में यह संभव है कि हम एक साथ आ सकें, एक दूसरे को देख सकें और सबसे बढ़कर यह पहचान सकें कि ईश्वर का प्रेम कोई सीमा नहीं जानता, कोई भेदभाव नहीं करता और हमें एकता में एक साथ लाता है। संत पापा ने कहा कि जब वे उनके चेहरों को देखते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं तथा इतनी सारी कठिनाइयों से घिरे दिलों के बारे में भी सोचते हैं, साथ ही उनको अन्य खुले उदार और दयालु दिलों से मिले प्यार से सांत्वना भी मिलती है। मसीह का हृदय पीड़ा से भर गया था और कुछ दयालु लोगों ने भी उसे सांत्वना दी और उसके दर्द को कम किया। संत पापा ने भले समारी के दृष्टांत का हवाला देते हुए कहा कि येसु ने सेवा के एक काम का उदाहरण देकर प्यार की सार्वभौमिकता को समझाया। ईश्वर के प्यार से प्रेरित होकर जो हमें दूसरों के जख्म भरने और जो लोग दुख झेल रहे हैं उनके प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं। संत पापा ने कहा कि संत ब्रदर पीटर और अखियेता के संत जोसेफ इन कनारी द्वीप से अमेरिका में सुसमाचार का प्रचार करने निकल पड़े, जिसे मिशनरी के नए रास्ते खुले। वे भी ऐसे प्रवासी थे जो अनजान दुनिया में गए और विश्वास, आशा और दयालुता को अपनी सबसे बड़ी दौलत के तौर पर ले गए और जो कुछ उनके पास था उसे साझा किया और उसी तरह उन्हें जो नई चीजें दी गई उनको सहृदय स्वीकार किया। संत पापा ने उन्हें आमंत्रित करते हुए कहा, आप अपनी इंसानियत, अपने सपनों और अपनी संस्कृति के खजाने को साझा करें जो आप इन द्वीपों में लाए हैं, और जो कुछ भी आपको दिया जाता है उसे लेने के लिए तैयार रहें। संत पापा ने कहा कि हम सब प्रवासी हैं, क्योंकि हम सब अपने स्वर्ग के घर की ओर जाने वाले यात्री हैं। आइए हम सब मिलकर इस सफर को सबके लिए और मानवीय बनाने में मदद करें। संत पापा ने इस स्वागत केंद्र का नाम लास राइसेस, मतलब जड़े पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस जो आपके साथ रहना चाहते थे, जड़ों की छवि का इस्तेमाल करके अपनी शुरुआत को याद रखने, एक साथ रहने और प्रभु पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देना पसंद करते थे, क्योंकि जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे उस पेड़ की तरह हैं जो पानी के पास लगा हो और जिसकी जड़ें नदी के किनारे फैली हों और उसके पत्ते हरे रहेंगे। संत पापा ने कहा कि जड़ों की यह छवि आपको प्रभु में मजबूती से बने रहने के लिए मदद करे, ताकि कोई भी तूफान आपको उनकी मौजूदगी से दूर ना कर सके। अंत में संत पापा ने अपने दिल में उन्हें रखने और अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने की बात करते हुए अपना आशीर्वाद दिया और उन सभी को माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में समर्पित किया।
3: पोप लियो 14वें ने स्पेन की प्रेरित यात्रा के अंतिम दिन तेनेरिफ के प्लाजा दिल क्रिस्तो दिला लगुना में अप्रवासियों के एकीकरण पर काम करने वाले संगठनों से मुलाकात की। एक पुरोहित एवं तीन अप्रवासियों का साक्ष्य सुनने के बाद पोप लियो ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस धर्म प्रांत के मुख्यालय सन क्रिस्तोबल दिला लगुना में आपके साथ इस पल को व्यतीत करना मेरे लिए खुशी की बात है। इस शहर के बारे में जो कहा गया है उससे मैं विस्मित हूँ। यह बिना दीवारों वाला एक खुला शहर है। शायद यह बात हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जिन रुकावटों को तोड़ना सबसे मुश्किल होता, वे हमेशा पत्थर नहीं होती। कभी कभी वे हमारे नज़रिए में, डर में या उदासीनता में होती हैं। इन द्वीपों को घेरे हुए यह समुद्र हमारे लिए ऐसी कहानियां लाता है, दर्द की कहानियां, उम्मीदों की कहानियां और खोज की कहानियां। बिना दीवारों वाले शहर में दिल भी उन लोगों का स्वागत करने के लिए खुल जाता है जो इन कहानियों को अपने साथ लाते हैं। इसीलिए हमें सामीप्य की भाषा सीखने की जरूरत है। ब्रेल और स्पर्श योग्य दूसरी तरह की लिखावट हमें याद दिलाती है कि शब्दों को छूकर भी पढ़ा जा सकता है। उसी तरह जुड़ने के लिए एक अलग तरीके से पढ़ने सीखना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रें देखती हैं फिर भी पहचान नहीं पाती। वे एक चेहरे को एक संख्या में, एक कहानी को एक दस्तावेज में और विविधता को दूरी में बदल देते हैं। इसलिए सुसमाचार हमें असलियत को पढ़ने का एक गहरा तरीका सिखाता है जो सामीप्य, धैर्य एवं मदद करने, साथ देने, मार्गदर्शन करने, सिखाने और रास्ता खोलने में सक्षम हाथों से शुरू होता है। जहाँ मानव दुख को प्यार से छुआ जाता है, वहाँ ख्रिस्त हमें यह सुनिश्चित करते हैं कि वे भूखे, प्यासे, नंगे, बीमार, कैदी और अजनबी में मौजूद हैं। ख्रिस्त उदात्त विश्वास के दिल में डाले गए ईश्वर के प्यार से बढ़ती है। इसी वजह से जरूरतमंदों की मौजूदगी में विश्वास मजबूत होता है और ख्रिस्त के लिए प्यार कामों में बदल जाता है, और यह सिर्फ दान या भलाई के काम से बढ़कर है। इसे एक प्रतिबद्धता कहा जाता है और इसे एक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। मदद घाव पर मरहम पट्टी लगाती है और एकीकरण भविष्य को फिर से बनाता है। संत पापा ने स्पष्ट करते हुए कहा, एकीकरण का मतलब यह नहीं है कि जो लोग आते हैं उनका इतिहास मिटा दिया जाए या उनसे वह सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए कहा जाए जो उनकी यादों का हिस्सा है। ना ही इसका मतलब एक दूसरे से अलग थलग समानांतर दुनिया बनाना है जहां लोग साथ रहते लेकिन एक दूसरे से नहीं मिलते। एकीकरण दोनों की यात्रा है। जो लोग आते हैं वे एक नई भूमि पर रहना सीखते हैं और जो लोग उनका स्वागत करते हैं वे अपनी पहचान को कमजोर किए बिना या मुलाकात के लिए अपने दिल बंद किए बिना अपने घरों को बढ़ाना सीखते हैं। संत पापा ने स्वागत करने वाले और स्वागत किए जाने वाले दोनों के कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा कि हर स्वागत करने वाले समाज के आगंतुकों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। वहीं जिनका स्वागत किया जाता है उनका सम्मान तब फलता फूलता है जब यह एक फर्ज बनता है और दूसरों के साथ मिलकर निर्माण की सच्ची इच्छा बन जाता है। अंत में संत पापा ने एकीकरण में सहयोग करने वालों से कहा, आइए हम अपनी नजरें उनकी ओर करें, उन लोगों से मुख ना मोड़ें जो परेशान हैं, हम प्रभु की ओर देखें ताकि हम अपने भाइयों और बहनों को उनकी नजरों से देखना सीख सकें। आपकी सेवा को बनाए रखें और इस भूमि को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हर कोई एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचाने। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर शुक्रवार को सांता क्रूज दे तेनेरिफे में पवित्र हृदय के महोत्सव का यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया।
4: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
1: आज के इस दिन में हमारा एक साथ आना एक कृपा है जब हम यीशु के हृदय को इतिहास के हृदय में प्रकट होता पाते हैं। मानव ईश्वर के संग एकता में बने रहने को बुलाया गया है और निष्ठा में स्वार्थहीन अपने को देने के द्वारा हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। उन्होंने कहा, आज बहुत से लोग अपने में एक वृहद असंतुलन का अनुभव करते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा क्रियाशील होने को बाध्य करता है। यह उनमें व्यस्तता के दबाव उत्पन्न करता है और इस निरंतरता में जल्द ही वे आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करने लगते हैं। मानव का हृदय क्या खोजता है? वे जो हर क्षण अधिक आनंदित होती और बेहतर जीवन जीते हैं वे लोग हैं जो यहाँ वहाँ डुबकी लगाने का परित्याग करते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उनके पास नहीं है। वे इस बात का अनुभव करते हैं कि हर व्यक्ति और हर चीज की प्रशंसा करने का अर्थ क्या होता है। वे छोटी से छोटी चीजों से सीखते और उनका आनंद उठाते हैं। संत पापा ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
4: Gracias por lo que son. Gracias por lo que hacen.
1: आप जो हैं और आप जो करते हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। संत पापा ने विश्वासी समुदाय से कहा, आप युवाओं और किशोरों के प्रति, धनी और गरीबों, स्थानीय निवासियों और अतिथियों के प्रति सजग रहें। उन सभी को ऐसी नजर से देखने की जरूरत है जो दिखावे

शुभकामनाएं देते हुए अपने प्रवचन के अंत में कहा, इस प्रेम के समुद्र को सबों के लिए खोलें, यही मेरी इच्छा और प्रार्थना है आपके लिए और उन सबों के लिए जो आपको जानेंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।